0: इंकलाब जिंदाबाद,
1: इंकलाब जिंदाबाद,
0: तोड़ाई समरम जिंदाबाद,
1: तोड़ाई समरम जिंदाबाद,
0: तोड़ाई गलड़े चोरे पुड़िचे,
1: तोड़ाई गलड़े चोरे पुड़िचे,
0: परिचित वर्कम बोधरारी,
1: परिचित वर्कम बोधरारी,
0: कारम मारी कोलम मारी,
1: कारम मारी कोलम मारी,
0: तोड़ाई इन्द्र मरते कल्ला,
1: तोड़ाई इन्द्र मरते कल्ला,
0: इंकलाब जिंदाबाद,
1: इंकलाब जिंदाबाद,
0: मरम मरियम समरम चाहिए,
1: मरम मरियम समरम चाहिए,
0: अवलाशंगल नेरी अधिकुम,
1: अवलाशंगल नेरी अधिकुम,
0: कल्ला मन्नाल कोल्ला मन्नाल,
1: कल्ला मन्नाल कोल्ला मन्नाल,
0: कईयं कच्ची इरी कुल्या,
1: कईयं कच्ची इरी कुल्या,
2: आय रिच्चन्यो रूवा कलशं कटना रोटर, न्यान तो राशि बड़ा उन्हें गेंजी, अल्ले, न्यान अरे जो इक्या, ये सोचते अंदर वंडी जा बिच्चुरे, उड़े कल्याण कर चुम, अरे ने चावड़ी इंदर नरतर, न्यान लाती जो निराज उन्हें लिया,
3: हाँ, कुड़मस ने हम इल्ला तोरे पेटी वरदा संसारी की नंदन अजंद्रे टा,
2: मुत्तशियान उड़ता ग्रहस्ता, आगो वेर वाले मुत्तशियान वाक जो ये सोच बल के समय आ सोच पणम वैच्च आशी पे कुछ रक्षपोट
3: चोदिका चंद्र
2: चोदी मुत्शो फैक्ट्री स्ट्रैक अड़े जोलि मुत्शी राम राम राम जो नि चेची भर्तवाणलो या चुम चोटे नी चेची एत्र आभरण वाईचो नी और स्टाइल वाई
4: एचिया भर्ताव
3: आंद्रेटा
4: कल्याण कहचलो स्वर्ण सारियों स्वर्ण सारियों चेची की वाई
2: अदलो इतने प्रश्न तरवाटे मुदल
4: मनुष्य गुणियो अंदस्त अ
2: चोरी
4: चंद्रेट
3: अंदस्वे पक्षे स्त्री वलुद भर्ता कुटा
5: चेची भर्तव इत्र
2: मनसाणी।